अक्षर कोट फलां दर्शन गुर दी थे, चरण मिठे जिन्हां नूं लग गए, चरना तो भाव है गुरु का शब्द, तम संसार चरण लग तरी है। हजूर कहिंदे ने जिन्हां नूं शब्द रूपी चरण प्राप्त हो गए हैं, वो संसार सागर तो सुते ही पार हो जाएंगे। पर मिठे लगे क्योंकि बाणी मिठी नहीं लगी तो प्यार नहीं बनिया, जे प्यार नहीं बनिया तो फिर हिरदे विच जोत नहीं जगेगी। इसलिए माई चरण गुर मीठे, धन गुरु नानक पातशाह जी दे सत्कार योग माता जी ने जेड़ी घर दी दासी सी तुलसा, उन्हूं आख्या जा तुलसा गुरु नानक नूं जगा के आ, प्रसादे दा टाइम है, प्रत्या प्रसादा तैयार हो गया, आके छक लैण। ते धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित सन, क्योंकि रब तां कदे सौंदा नहीं, ओ तां समाधि विच रहिंदे सन, लोकां दे पाणे सुत्ता होएगा, पर जदों निरंकार सौं गया संसार ते परलो ना आ जाएगी, वो कदे नहीं सौंदा निरंकार। दासी ने वेख्या के धन गुरु नानक पातशाह विराजमान हन, उपर चदरा पाया होया, एक चरण आपदा बाहर नजर आ रहा है, ते अपने मालिक दा सत्कार अदब मुख रख के हुण जगाउणा भी है। ते जदों अपनी रचना दे नाल धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरण चटे तां अगम निगम दी खबर हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। जन्मा दी सुती होई सुरत जाग गई, जगावन तां गई गुरु नानक नूं, पर तुलसा दासी दी अपनी जन्मा दी सुती होई सुरत जाग गई। की तकदी है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह तां पाई मन सुख जो गुरु नानक दे चरणां दा पवरा सी, विदेशां नूं माल लै जाया करदा सी बेड़े भर के, ते की तकिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह अपने सेवक दा ओ जहाज ओ बेड़ा बन्ने ला रहे हन, कुंभर केरी विच फस गया, सिख ने अरदास कीती है ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ओदा बेड़ा कंधी ला रहे हन। ते तुलसा आके माता जी नूं कहन लगी, मां जी मैं उठा नहीं सकी गुरु नानक नूं क्योंकि ओ अपने सेवक दा बेड़ा कंधी ला रहे हन। हुण मां इस गल नूं समझ ना सकी कि तुलसा दासी कित्थों बोल रही है। धन गुरु नानक पातशाह समाधि तो उत्थान होए, जदों प्रसादा छकन बैठे तो माता तृप्ता जी दे दो नैणा विचों मोती डिग पए। मां जी तुसीं रो रहे हो, आख्या लोग तां मखौलियां करदे ही हन, भई नानक कोई कार विहार नहीं करदा, वेला है, पता नहीं इसनूं की होए है, पता नहीं की चमड़िया होया है। लोग तो मखौलियां करते ही सन, पर आज दासी ने भी मखौल कीता, हुण तो नौकरानियां भी सानू मखौल करन लग गई। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों सुनी भाई दासी ने कहा कि भाई मन सुख दा बेड़ा कंधी ला रहे हैं, ते धन गुरु नानक पातशाह सुते ही कहन लगे, माता जी इहदी गल दा बुरा ना मनाओ, ए चली है, उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते दुनिया वलों ओ चली हो गई, ते निरंकार वलों ओदे द्वार खुल गए, हुण जिधर वेखदी है उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा नूर ही नूर नजर आ रहा है, कोई दूसरा फासला नहीं। तुलसा दासी ए जीव जदों गुरु नानक दे चरणां नाल लग गई, सिर्फ आप ही नहीं तरी, कुल ही नहीं तरी, अनेकां कुलां दा उधार हो गया तुलसा दासी दा। ए है जिन्हां नूं चरण मिठे लग गए हन, इसलिए
ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਛੱਡਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਸ਼ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।

नाम तेरो आ सुनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आ सुनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कार है। कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल

सैव जी कहन लगे किदे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है कोई मां प्यो जोगा होता है कोई अपने आप जोगा कोई दुनिया जोगा कोई देश कौम जोगा तू किदे जोगा है जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म

जे तू मेरे जोगा नाम ही होवेगा मैं ता भी तेरे जोगा होवांगा आखो सतनाम श्री वाह संबंध बन गया। संबंध भी ऐसा बचपन बीत गया जवानी आ गई ते जोगा सिंह ने भी अमृत छक लिया। गुरु नाल बड़ा प्यार करता है। जोगा सिंह दे माता पिता आए कहन लगे महाराज जोगा सिंह नु हुण आगे आ दियो इस नु कर ले जाइए इसका ब्याह कर दी। गुरु साहब ने आग्ञा दे दी ते नाल किया जोगा सिंह भाई जा मापिया दी सदर है वो तेरा व्याह करन जा मापिया दा चा पूरा कर। ते जोगा सिंह कहन लगा महाराज जे मैं चला गया ते तुहाडी सेवा कौन करेगा आखो सतनाम सेवा। सतगुरु कहन लगे जोगा सिंह जदू तू नहीं सी सेवा उदो भी होती सी तू चला जाएगा सेवा फिर भी होगी तू साडा फिक्र ना कर जा मापिया का चा पूरा कर। मथा टेकया तुर पिया पर जाता जाता कह गया बादशाह जदू मेरी लोड़ पवे मैनू बुला लेना आखो सतनाम सिंह।

डर के रहना चाहिए। जेड़ा उसके भय विच रहता है सुखी रहता है, ते जेड़ा उसके नाल दावे करे, जेड़ा उसके नाल गिनतियां गिने, ओ फिर सुखी नहीं रहता। गुरु ने इम्तिहान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लेके पीछे पीछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी, सिख भी नाल लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारिया रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होए। जोगा सिंह लावां लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई। जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी

चक्कर कटदे हैं। अमृत वेला हो गया ना ते जोगा सिंह बुड़े आ ते ना गुरु साहब की हड्डी। हुण जोगा सिंह ने मन विच सोचिया पहरेदार दे हटदा ने मैं क्यों ना चबारे चढ़। जोगा सिंह ने हिम्मत की जद पौड़ियां चढ़न लगा ते हुण गुरु साहब तो

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुबदा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे करा विच प्यार नहीं तो जिना करा विच प्यार नहीं वो कार नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों कार चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे साख मरमर लगाने नाल घर नहीं बनता घर बनता प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं साधु।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नु सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। पाईसा फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, इस सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ऐ सुदामा तू जगदीश नूं मिलते सही ओ तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

गुरु शब्द दी। गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ़ के दसम द्वार पहुंचा दिता, जिथे उदे सारे ही माड़े कर्म जेड़े सन ओ नाश हो गए।

भाई निर्मल सिंह जी नागपुर वाले, सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, आप संगतां दा ये नवा साल खुशियां खेड़ियां विच इसे तरह ही गुरु चरणा विच बतीत होवे।

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गए जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहेगुरु जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन तेरे चरणा नाल जुड़िया हां फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे ना। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान। जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया मैं न गने सै प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं। मेर करो त्रिन ते मोहि जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो। 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं।

कि हरि दा रूप है, परमेश्वर दा रूप है, ता कहंदे ने ऐ यार तू पग बड़ी सोहनी बनी, तेरी बोली बड़ी मिठी है, क्यों के भगत जी।

उस वक्त जहांगीर दा राज सी। तख्त दो एक तख्त ते गुरु हरगोबिंद साहब बैठे।

गुरु हरगोबिंद साहब आए ने जिन्हां दे दर्शन कीते आ जन्म मरण सौर जांदा है। इस गरीब भाई ने कहा जिस गुरु दी तुसी गल करदे हो कि ओ गरीबां नूं अनाथां नूं अपने कोल आण दिंदा है। उन्हां कहा हां भाई गुरु नानक दे घर जात पात नहीं देखी जांदी। गुरु नानक दे घर कोई भी जावे किसे भी जात दा किसे भी मजहब दा ओह उन्हों गल ना लगांदे। एक आई सिख गुरु साहब दे दर्शन करन वास्ते तुर पिया। इहदे कोल तीन पैसे सन ओह पल्ले बन लए जिथे गुरु साहबां दे बादशाह जहांगीर दे तंबू लगे सन।

तीन पैसे पल्यों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल इदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवे हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने किया, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मर

माया नहीं चाहिदी, मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहिदी। ते वापस मुड़ पे तंबू दे बाहर आया, अचानक ख्याल आया, एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी, वो तीन पैसे चुक के ते फिर

एक पासे बादशाह है, ओदे सिर ते भी पग है। एक पासे गुरु है, ओदे सिर ते भी पग है। पर पगां विच फर्क ए, एक पासे जुलम हुंदा है और एक पासे प्यार वंडिया जांदा है। इस वास्ते मीर अब्दुल्ला ते नत्था मल ढाडी कहंदे ने, ए गुरु हरगोबिंद साहब, पग जहांगीर ने भी

कर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

ना घबराए, चेहरे ते दृढ़ता है, डर दा कोई नाम निशान नहीं। इटा लगदियां गईयां छोटे साहबजादे।

सब तात पराई जब ते साध संगत मोए पाई। अरदास करो बाबा दीप सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी पुछदे ने कौले क्यों मांजदे हो, कहिंदे मैं तां मांजदा मन किते छाल ना मार जावे, सेवक बन के बीत जावे, करता पन ना आ जावे।

दिन तुहाडे कोलो बाहर कोई गुरु सेवा लैके आके घंटा जोड़े झाड़िया करो वो किस वास्ते के सच्चा पातशाह असी जोड़े झाड़ना लई है साडी सेवक बन के बीत जावे इहदे नाल ना जी वाड़ लग जांदी जिथे तुसी हो के आए हुंदे ना उत्थे वाड़ लग जांदी वाड़ तुहाडी निम्रता नाल उत्थे वाड़ लग जांदी गुरु इहनूं मैं दस नहीं सकदा लफ्ज़ां च इशारा लैणा जितने असी बैठे हां बाबा दीप सिंह जी दा गुण हुण बारिश हो गई है ते अगला सवाल जवाब बड़े प्यारे है कैसा सीन होएगा मालक खड़ा होवे बाबा जी दे हाथ सवा ना लिबड़े होण कोला च फड़िया होवे ते ऐ सवाल कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोले क्यों मांजदा पिया दीप सिंह उन्होंने कहा जी सेवक बन के बीज मैं करता ना बन जा हूं अगला सवाल बाबा दीप सिंह जी का जो अगली बारी साझा करा उन्होंने किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा हो गई है हुण कोल खड़े हो मेरी भी एक सवाल जड़ा ना वो आप जी कृपा करो ओदा मैनू जवाब झोली च पाओ ओ सवाल सी कि गुरु की खुशी किवें लई दी है आखो सतना बाबा दीप सिंह ने सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मेरी भी एक दिल च सवाल है भी सोचा सी अज पुछदा कल पुछदा हां ते बाबा जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दस की पुछदा दीप सिंह कहंदे जी मेरा सवाल है कि गुरु की खुशी किवें लई दी है गुरु की खुशी किवें मिलदी है ओ जेड़ा जवाब गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता ओ अगले वीरवार आखो सतनाम बाबा जी सेवा लैन क्योंकि वह भी बन जाना यह 26 जनवरी तो बाद नेड़े नेड़े ही आ जाना प्रसंग यो ही चलना ते अज ते वह गल बन गई जेड़ा टेलीविजन सीरियल आली ओही सीरियल इत्थे करके मुकांदे आ कि बीबी कहंदी हुण लाणा ही पैणा कल की होना है जी जेड़े बारिश करके गड्डिया च बैठे आ जां बेचारे मगर चले गए आ या रिश्तेदारी करके आया या जेड़ा परिवार करा रहा जे ते सारा किनका करंट लग जे फिर कहिंदा हुण अगले वीरवार आना जरूर है भी गुरु गोबिंद सिंह ने की जवाब दिता गुरु

महबूबे की मत के गाय के सन्माने दिमाण निदाने रिदान संत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देकर बड़ी अकीत दिलाब ने बैठी गुरु साहब जी आप जी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आप जी मुस्तफा कटिया जो आप जी ने सोच लिया कि आपको दरबार में जाना है एक गल नाल ही घट आज हो गई सब कुछ दूर पैदा आगे हो गई थे अच्छा जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज राज कुछ संगीत गलत की सचो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच जी जो संगीत है गाँव का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं बनने ये गल का मजबूत न बनता गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिरा मर्जी कर रहा है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की रोटी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सच हिंदी पैसा की कहा तो हाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी इस तंत्र की गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सच हिंदी दुनिया के दो फान आठ हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो बड़े काम गवा पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आ का स्वरूप है ना परमेश्वर यह पहले जवाब है जब जो सू समझ आ गई कीर्तन की है तो फिर तो सचन की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज 25 मिनट टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब चोट बनाई राग तकलीफ है यत्न करेंगे क्या भी नहीं कह सकते एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफा है आओ आपकी मदद है बात मैं पूछ सके मैं कब चोर नतीजे वाहे वाहे।

0: खालसा जी आओ सब तो पहला गुरु साहिबां दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दियां जालम सरकारां सिंघां सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होया सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुकम जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ती गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे